0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: هما بهن ركاتيرو
2: هما به ভ্যাকসিন ডেডোস হামাকুরু
1: সাগোন লাগিন আতোবু
2: কেসা কিবি আলানামা আঙ্গায়া নেফে নিওয়াকুরু
1: هما بهিগে এভস আলামাতেন হুরনামা মাস্ক এলুম
2: আতি هما بهিগে আলামাতেন হুরনামা একহেরিবু
1: هما بهিগে আলামাতে ফেনিজনামা লাসনু কুরবা সিহি ফরওয়া হোদবা
2: দুবা চে গেনকা ওম্মা গো হুরসনু করে ফদা দত্ততি হেরি
3: আ কোকো
2: দত্ত আদে মড় মড় মশায়ক বালাগে গন্নচে দত্ত মিহারু মি হুরস করে উনিঙ্গে
3: তি হাদ রাঙ্গাল কুজকে বড় বড় শুকরিয়া
2: মারহাবা
4: ದಿವೇ ಎಫ್ಎಂ ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಹ
5: ಕಾಂತಕ ಗುಳಿಪವಿ ಹಿಕ್ಯಾಮ ರೀತಿ
6: ಲವತಸಾ ರೇ ಆತೆಸ್ ಕುರಿಯೆ
7: ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಹ ದಿವೇ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಮೆ ಹಾಯಿ ಬೈ ಲವತ ಕೋಮಸ್ ಪೆರಿಗೆ
6: ಗೊಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮೇಕಿ ಹಮ
4: ದಿವೇ ಹಿಂಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೆ ನಮುಗ ಅಬದುಸ್
8: ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಹ ದಿವೇ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವೇ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಲವೇ